0: नमस्कार जमींदार साहब।
1: नमस्कार नमस्कार। कौन काम से अलो? हाँ घर परिवार मोर घर चल अलो। आओ बैठो।
0: आ बैठ
1: बैठो बैठो। बताओ कौन काम से आयल तो मोर घरे?
0: अब का कहूँ मालिक, हमार लड़का प्रेम कैले बाटन। हमरे अपने बेटी के हाथ मांगे आइले बाटन।
1: ना ना ना ना ना, ऐसा हो ही नहीं सका। हम अपन छाई के हाथ ऐसा गरीब के हाथ में कब्बो नहीं दे। जाओ भागो, नखे तो इन्हन के यहाँ से उठो उठो उठो उठो निकलो। गरीब होकर धनी हो सपना देखा थे बदमाश।